आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपये क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मी काका समर्थ शिंदे मुला है पीक विमा अनुदान रक्कम 1,38,000 रुपये मिला है। तर काही गोष्टींमुळे येत असतं, त्यासाठी शेतकऱ्याने विमा याचा लाभ शासनाच्या योजनेचा लाभ घेतला पाहिजे, त्यामुळे शेतकरी समृद्ध होऊ शकेल।
2: खरीफ पीक विम्यासाठी लवकरच नोंदणी करा।
3: बँक शाखा, विमा कंपनी, कृषी ऋण समिती, जनसेवा केंद्राशी संपर्क करा।
4: पीक विमा संबंधित अधिक माहितीसाठी हेल्पलाईन नंबर 1444 वर कॉल करा।

0: मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूँ।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तू भी ना आती।

0: दोस्तों आज अगर किसी से बात करनी हो तो हम WhatsApp, Instagram, Facebook पर मैसेज कर देते, लेकिन 90s में हमारा सोशल नेटवर्क हमारी गली हुआ करती थी। आप सुन रहे हो RJ अदनान के साथ
1: की बातें।
0: शाम के 5 बजते पूरी गली बच्चों से भर जाती थी। किसी के हाथ में कंचे, किसी के पास गिल्ली डंडा और किसी के पास वो लाल रंग की प्लास्टिक वाली गेंद। गली में एक ही आवाज गूंजती थी, अरे जल्दी आ, मैच शुरू हो गया है। और मजे की बात ये थी, उस वक्त ना कोई वाईफाई था ना मोबाइल, फिर भी कनेक्शन सबसे स्ट्रांग होता था। किसी के घर में टीवी आ गई तो पूरे मोहल्ले के बच्चे वही जमा हो जाते थे, कभी रामायण कभी शक्तिमान, और अगर केबल लग गया तो बस पूरा मोहल्ला VIP बन जाता था। आज भी अगर आंख बंद करूं तो वो गली याद आती है, जहां दोस्तों में स्टेटस नहीं होता था, बस साथ होता था। कभी सोचा है आज हम डिजिटल दुनिया में हैं, लेकिन असली सोशल लाइफ तो 90s की गलियों में थी। तो आज के 90s वाले शो में हम इस पर ही बात करने वाले हैं, 90s और 90s की गली मोहल्ले की यादें और अपना बचपन। सो बहुत सारी बातें होगी कुछ देर के बाद, तब तक के लिए स्टे ट्यून।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
0: 90s की बातें विद आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।

0: 90s का मोहल्ला सिर्फ घरों का समूह नहीं था, वो एक छोटा सा परिवार था। शाम होती गली के कोने पर एक चाय की दुकान होती थी, जहां बड़े लोग बैठते थे और देश दुनिया की सबसे बड़ी मीटिंग वहीं होती थी। याद है ना आपको
1: वो बातें, 90s की बातें।
0: चाय के साथ चर्चा भी गर्म होती थी, कभी क्रिकेट, कभी राजनीति और कभी मोहल्ले की नई खबर। और बच्चे उस दुकान के पास खड़े होकर 5 रुपए की टॉफी और इमली लेकर खुश हो जाते थे। मोहल्ले में अगर किसी के घर कोई खुशखबरी आई तो ऐसा लगता था जैसे पूरा मोहल्ला खुश हो गया हो, और अगर किसी के घर दुख आया तो पूरा मोहल्ला उसके साथ खड़ा रहता था। आज बड़े से बड़े अपार्टमेंट बन गए, लेकिन सच कहूं वो 90s का मोहल्ला असली सोसाइटी था, जहां रिश्ते किराए के नहीं दिल के होते थे। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, सोसाइटीज बड़ी होते हैं लेकिन आपके आस पड़ोस में कौन रहता है ये हमें पता ही नहीं चलता। और 90s के जमाने में मोहल्ले की बात हो गई, गली की बात हो गई, तो हमारे घर में क्या खाना बन रहा है ये सामने वाले को पता होता था, सामने वाले के घर में क्या हलचल चल रही है, कौन सा मेहमान आया है ये हमें पता होता था। यानी कि कनेक्शन इतना स्ट्रांग होता था, एक दूसरों के घरों के बीच में बस दीवारें होती थी, इमोशंस बिल्कुल ट्रांसफर हो ही जाते थे। और भी इस पर बातें होगी मोहल्ले की कुछ देर में, स्टे ट्यून्ड।
1: बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
2: 90s की बातें विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।

0: अगर आप 90s में बड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा था, हमारी गली मोहल्ला। आप सुन रहे हो आरजे अदनान के साथ
1: वो बातें 90s की बातें।
0: ईट से या लकड़ी से स्टंप बनते थे, चप्पल से बाउंड्री तय होती थी और बॉल किसी के घर चले जाए तो तुरंत सस्पेंड या तो फिर आउट हो जाते थे या तो फिर सिक्स भी हो जाता था। और फिर सबकी नजर उस दोस्त पर होती थी जिसकी बारी होती ही वो बॉल लेकर चले जाने की जिद करता था। सबसे बड़ी टेंशन होती थी अंकल बाहर आ गए तो क्या होगा, और जब कोई दोस्त सिक्स मार देता था तो ऐसा जश्न होता था जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हो। एक नमूना हर एक ग्रुप में होता था, बैट उसके पास होती थी और वो शाना क्या करता था पता है, खुद की बैटिंग होने के बाद बहाना देकर घर चले जाने की जिद करता था ताकि बाकी लोग बैटिंग ना कर पाए, या फिर जिसके पास बैट होती थी ना तो उसके एटीट्यूड और उसका स्वैग एकदम अलग होता था, वो जैसा कहे वैसी हमें बात मानना पड़ती थी क्योंकि उसके पास बैट है और हम बस खेलने आए हैं। तो उस बंदे का एटीट्यूड अलग लेवल में होता था, बट वो उस दौर का एक अलग मजा ही था। अरे एक अंकल गली में होता ही था, पता नहीं उनको बच्चों से क्या प्रॉब्लम होती थी, अगर क्रिकेट खेलने लगे सबसे पहले वो अंकल चिल्लाने लगता था कि यहाँ पर मत खेलो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। खैर वो एक यादें है अब 90s की। आज बच्चे प्लेस्टेशन पर क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जो मजा धूप में धूल में क्रिकेट खेलने में आता था वो शायद आज की किसी गेमिंग कंसोल पर नहीं आएगा। सच्चे कह रहा हूँ। स्टे ट्यून।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
2: 90s की बातें विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।

0: 90s में अगर आपको मोहल्ले की कोई खबर चाहिए होती थी तो उसके लिए न्यूज़ चैनल नहीं मोहल्ले की आंटियां काफी होती थी। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM पर।
1: वो बातें 90s की बातें।
0: किसके घर मेहमान आए, किसके घर नया टीवी आया, किसका बेटा पहली बार नौकरी पर गया, सबकी लाइव अपडेट उन आंटियों के पास होती थी। और मजे की बात ये थी कि कभी कभी खबर इतनी तेज फैलती थी कि घर वालों को भी बाद में पता चलती थी, पहले उस आंटी को पता चलती थी। लेकिन सच कहूं वही आंटियां मोहल्ले की सबसे बड़ी केयर टेकर भी होती थी। अगर कोई बच्चा गिर जाए तो सबसे पहले वही दौड़कर आती थी। अगर हमारी मम्मी 2 दिन के लिए गाँव चली जाए तो हमारी मम्मी उन्हीं आंटियों को कहती थी कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना। और वो आंटियां भी इतने अच्छे से हमारा ख्याल रखती थी, सुबह दोपहर शाम का खाना हो, स्कूल भेजना हो, पढ़ाई करवाना हो, उन आंटियों के भरोसे होता था। तो एक ऐसा अपनापन और विदाउट किसी रिश्ते के एक रिश्ता तय होता था इन गलियों में, इन मोहल्लों में 90s के वक्त में। और 90s और छुट्टियां, ये तो एक अलग ही कॉम्बिनेशन है। बताऊंगा इसकी भी यादें कुछ देर में, स्टे ट्यून।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं।
2: 90s की बातें विद आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।

0: 90s की गर्मियों की छुट्टियाँ आज भी दिल में एक फेस्टिवल की तरह बजने लगती है।
1: वो बातें 90s की बातें,
0: ना कोई समर कैंप, ना कोई मोबाइल गेम, बस सुबह से शाम तक मस्ती ही मस्ती और क्रिकेट ही क्रिकेट। सुबह साइकिल लेकर निकलना, दोपहर में आम के पेड़ के नीचे बैठना और शाम को फिर वही गली क्रिकेट होता था और रात को घर की छत पर चारपाई लगती थी। और एक होता था लोड शेडिंग, हर दिन रात में 2 या 4 घंटे लाइट चली जाती थी। इस वजह से ना तो पूरे घर के लोग गली में बाहर आकर बैठते थे, एक दूसरे के साथ गप्पे मारते थे और बच्चों का एक ग्रुप होता था जिसमें एक लड़का होता था जो सबसे थोड़ा बड़ा होता था और वो क्या करता था पता है, भूतों की कहानियां सुनाना शुरू कर देता था एक अंधेरी रात में। इस तरीके से वो कहानी शुरू होती थी और एंड होते होते भाई सब बच्चों की हालत खराब हो जाती थी। अंधेरे में कोई घर जाने का नाम ही नहीं लेता था क्योंकि अंधेरे से सबको डर लगता था। सो कुछ ऐसी यादें है। और आसमान में तारे गिनते गिनते सो जाना, भाई ये तो सबसे खास बात है, नींद कब लग जाए पता ही नहीं चलता। आज हमें नींद ना आने वाली प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है लेकिन एक वक्त था जब आसमान में तारे गिनते गिनते नींद आती थी। आज एसी कमरे में सोते हैं लेकिन वो छत वाली नींद आज भी कहीं खो गई है। बट उस यादों को आप फिर से ताजा कर सकते हो, गर्मी का मौसम है तो छत पर सोकर देखिएगा तारे गिनते गिनते कितनी बढ़िया नींद आएगी।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती है, वो बातें
2: 90s की बातें विद आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।

0: झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले तो पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है,
0: बड़ा है।
1: फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टर
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: मेरी
1: है।
0: तो सुनो,
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए,
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं
0: चलती।
2: योर ड्रीम इज टू बिकम एन इंजीनियर, एन आर्किटेक्ट, और टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। सो MGM University's JNEC is the best option for you. Course is accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 9404474266 or visit mgmu.ac.in.
3: बाय वन गेट वन फ्री होय खरं एक घ्या आणि एक फ्री मिळवा। स्वातंत्र्य दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्यामकुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर्स।
4: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किमया कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
3: म्हणजे स्टाईलही डबल आणि शॉपिंगचा आनंदही डबल। स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत।
4: द्वारकादास श्यामकुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
3: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता द्वारकादास श्यामकुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991।
2: Wondering what's next?
5: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
2: where innovation meets excellence. Admissions are open
5: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
2: across diverse fields from engineering and AI to law.
5: Apply now at www.mgmu.ac.in
2: or call 9067612000.

0: 90s की दोस्ती में एक अलग ही सादगी थी, ना कोई ऑनलाइन स्टेटस, ना कोई लास्ट सीन। आप सुन रहे हो 90s वाला शो।
1: वो बातें 90s की बातें।
0: अगर दोस्त घर पर नहीं मिला तो बस गली में आवाज लगती थी, अरे उसे बुलाना, और दो मिनट में वो बाहर आ जाता था। ना कोई ईगो, ना कोई फॉर्मेलिटी, लड़ाई भी होती थी और 10 मिनट बाद फिर साथ में खेलना भी था। आज कांटेक्ट में हजारों नंबर है, लेकिन सच कहूं दोस्ती का असली मतलब 90s के मोहल्ले ने सिखाया था, जहां दोस्त मोबाइल लिस्ट में नहीं दिल की लिस्ट में होते थे। तो आज हमने बात की 90s के मोहल्ले की, गलियों की, दोस्ती की, परिवार की और क्रिकेट की। तो ऐसे ही ना 90s वाले शो में अक्सर हम अलग अलग टॉपिक पर बात करते हैं, जिसमें हमें 90s का जमाना घूमने का, फिरने का, उसे याद करने का एक मौका मिलता है। तो आप बताइए नेक्स्ट संडे हम 90s वाले शो में कौन से टॉपिक पर बात करें। डीएम करना इंस्टा पर आरजी अदनान इस इंस्टा पेज पर, और ये 90s वाला शो आपको कैसा लग रहा है याद से बताना और एंजॉय करना आरजी अदनान के साथ ये संडे फंडे वाले शो। तब तक के लिए आप टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती है, वो बातें
2: 90s की बातें विद आरजी अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
3: रंगभूमीच्या कलाविश्वाचा अनुभव घ्यायचाय, मग तयार व्हा जिगीशा नाट्य महोत्सव 2026। नाट्यप्रयोग, अभिवाचन, परिसंवाद आणि रंगभूमीशी संबंधित विविध कार्यक्रमाची खास मेजवानी। या महोत्सवाचे उद्घाटक प्रसिद्ध अभिनेत्री रत्ना पाठक, तर नाट्यविषयक पुस्तक प्रदर्शनाचे उद्घाटक ज्येष्ठ लेखक बाबा भाण, सवाल जवाब, एमएचजी सुटकेस आणि भरड यांसारखे दर्जेदार नाट्यप्रयोग। मराठवाडा आर्ट कल्चर अँड फिल्म फाउंडेशन आणि महात्मा गांधी मिशन आयोजित जिगीशा नाट्य सहवास 2026 21-22 आणि 23 ऑगस्ट रुक्मिणी नाट्यगृह एमजीएम परिसर छत्रपती संभाजीनगर। तरी सर्व रसिक प्रेक्षकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे।

0: हर शहर की ना तो अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक पहचान होती है।
1: Only on MGM 90.8 FM.
0: और उस पहचान को बनाने में सबसे बड़ा योगदान होता है उसकी धरोहर का। हमारा अपना शहर छत्रपति संभाजीनगर, जिसे हम प्यार से सिटी ऑफ गेट्स भी कहते हैं, याद तो है ना आपको। और ये दरवाजे से पत्थरों से और लकड़ियों से नहीं बने, बल्कि इनमें छुपी है हमारे शहर की सदियों पुरानी कहानी, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और हमारी पहचान। यू नो व्हाट, भड़कल गेट हो, दिल्ली गेट हो, रोशन गेट हो, या फिर कोई भी ऐतिहासिक धरोहर, ये सिर्फ देखने की जगह नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ी गई हुई विरासत है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी धरोहर को जाने, उनकी अहमियत समझे और दूसरों तक वो कहानियां पहुंचाए, क्योंकि जब हम अपनी विरासत को संभालते हैं तभी हमारी पहचान आने वाले कल तक कायम रहती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी है मेरी माटी मेरी धरोहर अभियान, मेरे शहर की पहचान मेरी जिम्मेदारी है। तो अपने शहर की जो धरोहर है, जो अपने यहाँ पर ऐतिहासिक किले है, गेट्स है और भी जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, तो उनको संभालना, उनको मेंटेन करना और उनकी साफ सफाई रखना, ये जिम्मेदारी हम सबकी है, बस प्रशासन की नहीं, मीडिया और आपकी भी है। तो ये बात का भी ख्याल रखिए, क्योंकि यही तो इतिहास है जो हम आने वाले जनरेशन तक पहुंचाने वाले हैं। तो आइए फिर अपने धरोहर को सिर्फ देखे नहीं, उसे जाने समझे और संभाल कर रखे। तो वादा कीजिएगा कि अपनी धरोहर संभालने के लिए आप भी मदद करेंगे, क्योंकि मेरी माटी मेरी धरोहर। स्टे ट्यून्ड विद आरजे अदनान।
2: All is well with RJ Adnan.

0: फैशन सिर्फ स्टाइल नहीं अपनी रूट्स को सेलिब्रेट करने का एक अंदाज है। स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026 लियोनार्डो दा विंची स्कूल ऑफ डिजाइन MGM यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स लेकर आ रहे स्पेशली डिजाइन आउटफिट जो बने हैं ब्यूटीफुल हैंडलूम फैब्रिक से और फैशन के साथ इंटीरियर डिजाइन डिपार्टमेंट की क्रिएटिव इंस्टॉलेशन भी होगी स्पेशल अट्रैक्शन। स्वदेशी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपो 2026 14 टू 16 अगस्त एंड फैशन शो 15 अगस्त इवनिंग 7 PM एट सागर रिसोर्ट चिकलठाना छत्रपति संभाजीनगर।
1: प्यारे हम
2: नमस्कार छत्रपति संभाजीनगर
3: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM।

0: नमस्कार, छत्रपती संभाजी नगर
1: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM।
2: जागिए श्रीमती जी, आंखें खोलिए।
3: क्या चाहिए?
2: अरे भाई देर हो गई।
3: तो मैं क्या करूँ?
2: कॉफी, कॉफी चाहिए।
3: कॉफी, कॉफी और मैं

0: कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है,
0: मुझे कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
0: अच्छा मैं कहती हूँ,

ट्रांसलेशन कर दूं, उनके जमाल रुख पे, उनके रोशन चेहरे पे, जमाल रुख रोशन चेहरा, उनके जमाल रुख पे उन्हीं का जमाल था, उनके रोशन चेहरे पे उन्हीं की रोशनी थी।